0: कमेडी क्याप्सुल।
1: तिमी हाँसिरौ, मेरो मुइयाको उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ। कति उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ, गुनगुनाइरौ, मेरो के जान्छ यार, तिमीलाई सबैले पागल भन्छ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
0: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: आजकल किन स्कुल जाने छ नाति?
2: हजुर बा, राम्रो विद्यार्थी चाहिए, घरमा लिन आइहाल्छन्।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: जियो जियो।
4: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या। ये में सुनेर कस्तो लाग्यो, झम्म लाग्यो।
0: कॉमेडी क्याप्सुल,
2: अडियो अडियो, एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा,
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: इन्डियन केटीले डाक्टर सँग भन्नुभयो, मेरा बेटा मोटरसाइकल से गिर गया। त्यसपछि डाक्टरले भन्नुभयो, आई डोन्ट नो हिन्दी, प्लिज टक इन इङ्ग्लिस। त्यसपछि लेडीले भन्नुभयो, सर आई नो स्पिक इङ्ग्लिस। डाक्टरले भन्नुभयो, ट्राई प्लिज। यसपछि लेडीले भन्नुभयो, माई लोन्डा गिरोन्डा फ्रम हिरोन्डा।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो ऑडियो। एक कान दुई कान मैदान। यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल
1: के तिमी पहाड चढ्न सक्छौ? हो सक्दिन कि क्या हो, सक्दिन सक्दिन। के तिमी सञ्जीवनी बुटी ल्याउन सक्छौ? त्यो पनि सक्दिन। त्यसपछि के लेखा रहेछ? के तिमी छाती चिर्न सक्छौ? त्यो पनि सक्दिन। त्यसपछि के लेखा रहेछ? ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास। अन्तिममा लेखा रहेछ, त्यसैले साथी अनुहार बाँदर जस्तो हुँदैमा कोही पनि हनुमान हुँदैन।
0: कान धोई कान मैदान, यसमै छ मजा। फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कॉमेडी कैप्सूल,
2: ऑडियो ऑडियो
3: एक कान दो कान मैदान,
4: इसमें छ मजा
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: के भगान्ति मुला,
2: सुन न
1: भन न,
0: आज शिकार खेल्न जाँदा बाघले मसँग गफ गरे नि।
1: नचाहिने कुरा, अनि के भन्यो त बाघले?
0: मैले उतिर बन्दुक तेर्साए अनि बाघ त मजाले हाँसेर बिमाको कागज पो देखायो।
3: कमेडी क्याप्सुल।
4: काम धोई काम मैदान, यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सूल।
1: प्रिय मेरो कुरा ध्यान दिएर सुनाई, म तिमीलाई नि सपनामा देख्न भए पनि अचेल निन्द्राको औषधि खाने गरेका छु।
0: कमेडी कैप्सूल।
2: एक काम दो काम मैदान, इसमें छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: न माया न प्यार यो कुरो न माया न प्यार न फ्रेंडशिप न प्यार गैर छ कुरो न माया न प्यार न फ्रेंडशिप न प्यार आजको यो देवदासको कुरा मान यार न चन्द्रमुखी न पारु सबै केटीलाई लाइन मार
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: अडियो अडियो
3: काम धोई काम मैदान
4: यसमै छ मजा
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: सर संता, इससे पहले कि हम अपनी मोबाइल कंपनी में आपको नौकरी दें, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है?
2: कार्टून नेटवर्क।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: तुझे पता है बंता, नौकरों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
2: भाई क्यों, क्या हुआ?
1: मैंने और मेरी बीवी ने प्यार करने का एक कोड रखा था। वो कोड था चलो चीनी खाएं, और ये कोड मेरे नौकर ने सुन लिया। एक दिन मेरा नौकर मेरी बेटी के साथ प्यार कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
2: अच्छा, फिर तूने क्या कहा?
1: मैंने अपने नौकर को कहा, अबे साले ये क्या कर रहा है? मेरा नौकर कहता, चीनी खा रहा हूँ मालिक। मैंने उसे कहा, चीनी ही खानी थी तो खुली बोरी से खा लेता, नई बोरी खोलने की क्या जरूरत थी।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संता जी, आपका घर इतना दूर है कि मुझे 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा आपका ये पार्सल पहुंचाने के लिए।
2: ओ पोस्टमैन जी, आप इतनी दूर क्यों आए? इससे अच्छा था कि आप इसे पोस्ट ही कर देते।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक काम धोई का मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

सुनौ त रेडियो अडियो देशकै स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा ए राता मकै रेडियो अडियो खोल्न पर्दैन।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: पप्पू तुम हिस्ट्री में फेल क्यों हो गए?
2: पापा सभी क्वेश्चन उस टाइम के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ।
2: वर मांगो वत्स।
3: प्रभु जी, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वधु चाहिए।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
4: अडियो अडियो। एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा।
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू प्रपोज मारने गया था?
2: ओए बंता, मैंने उसे प्रपोज मार दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो उसने क्या कहा?
2: वो बोली, मैं तेरे से एक साल बड़ी हूँ।
1: अच्छा, तो तूने क्या कहा?
2: मैंने कहा, कोई बात नहीं सोनिए, मैं तुझसे अगले साल शादी कर लूँगा।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: एडियो ऑडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: डॉक्टर साहब, मैं सुसु 6 बजे करता हूँ और पॉटी 7 बजे करता हूँ।
2: अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: पर डॉक्टर साहब, मेरी आँख 8 बजे खुलती है।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: एडियो ऑडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईँको साथ,
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ।
2: अरे वाह, देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें।

0: सुहाउँछ कमेडी क्याप्सुल
1: हैन के भो हजुरबा घाँस काट्न जान ए भन्दा रिसाउने नातिनी आज नाक काटेर गई
0: कमेडी क्याप्सुल
2: एडियो अडियो
3: एक काम दुई काम मैदान यसमै छ मजा
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन के भयो ससुरबा?
2: म अल्छी भएर अल्छी गरेँ कि अल्छी गरेर चाहिँ अल्छी भएँ, खै के भयो के भयो?
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन के भयो सन्दीपज्यू?
2: साथीलाई पैसा सापट्टि दिएको, आफ्नो माग्ने बानी छैन, उसको फिर्ता नगर्ने बानी रहेछ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो।
4: एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: भविष्य उज्जवल छ।
1: बोल्यो हरियो बोल्यो सुनिराखौ है।
2: सुन नीलो आकाश चाहिँ नीलो नै एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
3: देशकै स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान।